0: शिव जी का ये रूप नया है।
1: आंख को पड़ी पल के भारी, समझा पुरुष जो देखी नारी।

0: लव गुरु तुम्हारे लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
1: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गुलाब ला।

फूलों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यू देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

बैठी थी, आराम से मैं छत पे गई, कुछ काम से मैं सीढ़ी पे था, वो चोर खड़ा।

ना हरम में ना सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। आहा।